बिंदास हमारी जियो बिंदा सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब दिन वड्याई कोई नाओ ना जाने मेरा वाहे गुरु कहो नानक सब दिन वड्याई कोई नाओ ना जाने मेरा वाहिगुरु कुल जी वाहिगुरु अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याय हे रंगल गुरुदेव अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदरों सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण दयाईया जह डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करनोन दयावा ताई सब थाई होए साय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बला जी वाहिगुरु पंजां प्यारियां चौवां साहब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया बन छकिया दे चलाई तेग वाही देख के डट कीता तिना बियारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेता सी सदते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया दे जड़ी आरिया ना चराएगा गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग नभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवै चेते आवन का सदका सर्ब सुख हुआ जहां जहां खालसा जी साहिबा तहां तहां रछिया रियायता देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी साय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान बबेक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चमकिया झंडे मुंगे जुगों जुगिया ठल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादा रखाया वाहिगुरु ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ।

अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसिक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते नमो पान पाने

बाद बादे अनंगी अनाम्य सुमस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते सुमस्ती वेपूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो वस्त्र पाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भोगदे नमो जोग जोगे।

भगवती संत प्रसाद कहते क्या सिद्धि सिख्या भिज पिसे क्या गंज कर्मे क्या भंज परमे क्या भिज लू कह के आदित सु कह के अवधूत वरने के बेभूत करने के राजंग प्रवाह के धर्म तो जाए के आसुक भरने के सर्वाय भरने के जगतंग कृति है कि शत्रंग छत्री के ब्रह्म स्वरूप है कि हर पहुन उपाय

अनित है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रशंत व प्रसाद, सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणु सर्वं त्राणु सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं योग्यता।

करुणा ले है अरकाल है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके करण है मन मानिय है जग जानिय है सर्वम पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड खलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत यंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे।

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते।

सावधान एकाग्र चित हो जाए। भाई गुरदास जी ने भी इस तरह दियां बड़ियां उदाहरणां दित्तियां भगत बाणी विच्चों भी ते गुरु साहिबाना दी बाणी दे विच्चों भी। आनीले कागद काटीले गुड़ी आकाश मदे भरमीले, उहदा ध्यान उस पतंग दी डोर वाले पासे हुंदा है, सावधान हुंदा है। कबीर साहब भी कहिंदे ने चेत ढाल पासा, चिंतन कर चेते विच रख। गुरु अर्जन देव जी ने उंझ तां सारी बाणी विच खास करके श्री सुखमनी साहब जी दी बाणी दे अंदर शरीर दे एक एक अंग नूं, कर्म इंद्रे नूं, ज्ञान इंद्रे नूं मुख रख के बहुत सारे बोल उच्चारण कीते ने। सिमरों सिमर सिमर सुख पावां, कल कलेश तन माहे मिटावां, सिमरों जास बिसंभर एक है, नाम जपत अगंत अनेक है। अनेक ही इस तरह के बोल ने। गुरु साहिबाना ने केवल रसना दे राही गाउण दी गाथा नहीं कीती, नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिनसै सब संग, ये बोल भी आउंदे ने, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कन्ना वास्ते बोल आउंदे ने, कर हर कर्म शरवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा। अज दे पावन पवित्र मुखवाक विच, पावन पवित्र हुक्मनामे अंदर कबीर साहब जी ने जो हुक्म बख्शिश किया है वह कहिंदे ने, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर रखिया, बहुर लगी माया। माता दे अगन दे कुंड विच उस परमात्मा ने अपनी रखिया दित्ती, नाम जपाया। प्राणी काहे को लोभ लग गए, रतन जन्म खोया, पर लोभ वस आके हे प्राणी तू उस परमात्मा नू क्यों विसार दिता, ते अमोलक जन्म नू क्यों गवा दिता है। अज दे हुक्मनामे अंदर भगत कबीर साहब जी ने मनुख दी उत्पत्ति ते नाशवानता का जिक्र किया। उत्पत्ति भी उहदे हुक्म विच उहदी दया दृष्टि करके हुंदी है, ते उहदे हुक्म दे अंदर ही नाश हो जांदा। तो उहदी सिफत सलाह कर, उहदे गुणा का गायन कर, उहदी वडियाई कर। पातशाह जी कृपा करन, पावन बाणी दी विचार करदे आं, भुल्लां त्रुटियां दी खिमा करना, सतगुरु जी की बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया,